श्री वाहिगुरु साहब जीओ, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलता

कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर दिखाए किता आपना ज्यों तिस दी वड़े आई जो तिस पावै सो।

सुखवासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का

तिस ही को हमारी सगल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तुला सफर कृपा दुष्ट कर फुला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्न घट घट के बट पट की जान जब उद कर

मूढ़कशपेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एका अरूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पुप्पा अंडज जेर से तज किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दिन्नी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो संक्रिय कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप सियंभव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आसिक संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणकाता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दुष्ट तन जाहे ने हरहो ताके ताप तनक मैं हरहो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शवाए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा

ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किरबिक सगल देहे को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता। सिरियस तुज पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बांछत फल पाव सोई, दुखनाथ से ब्यापत कोई अड़ल, सुने गुंजो या

वो कहा है चौबई संबत सत्रह सहस पण जाय अर्ध सहसम तीन गह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रब वारा तीर्थ सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो बघयाने त्रया चरित्रे मंत्री पूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शवम सत अबजो दोहरा दाह जानकर दास पर की जय कृपा अपार आप हाद राख मोहे मन क्रम वचन विचार छपई मैना ग्रह प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू नै त्याऊ कान सुने पहचान न तिन साओ लिबलागी मोरी पग इन साओ महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो

हाथ उबारो अमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता बिद नाना कृष्ण जथा मत चरतरो चारो चूको कब लियो सुधारो कब बाय दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हों जग माहे ज्योते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिबिचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आए इस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते कब हूँ सक कब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कैत सुनाए कब बाय दोहरा ठाट पयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय पंथ चला तब जगत मैं जब तुम

दुख सब सारना अंगीकारों करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समराथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा है करता तेरा सब कुछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा है साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिठो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुरगर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होवा तितगर अनहद वाजे अनद सुनो वड भागे।

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर गै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाए। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई आए जस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए घर नाहु निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान दर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जना नाम जपिया। वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता। तिना प्यारियां सजियारियां दी कमाई दा ध्यान दर के बोलो जी। जना सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए खुपरियां लवाइया। चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं आ रहा सिखी के सा सवासा संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान दर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान दर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतियावन गा।

सदा कुर्बानी बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई आए जस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आए घर नाओ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी पंजा प्यारियां चौ साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन छकिया देख चलाई तेग वाही दे के अंडट किता तेरा प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी जनाह सिंह सिंगणियां ने धर्म हे सीस दत्ते बंद बंद कटवाए खुपरियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आरिया सिखी केसां सवासां संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान दरगे बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान दरगे बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वै चेत आमन का सदका सर्व सुख वै जां जां खालसा जी साहिबता तर छह रियायत देख तेग फतेह बिरत की पैज पंथ की जी त्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन शनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत तुच्छी मत दा राखा बकाल पुरख वाहिगुरु ए अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते गुरुद्वारिया गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान फिर खालसा जी नूं बख्शो ए नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट सचे पिता वाहिगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज आप जी ने पार मेरा बख्शी कृपा की थी आप जी की हजूरी संध्या वेले दे सुंदर दीवान सजे सज दवाना में आप जी की अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचार छे पौड़ी नंद साहब जी के गायन होए समुचियां सेवावां निभाउंदिया होया अनेक प्रकार दियां गलतियां भुला दी माफी बख्शो अगां वास्ते सुध स्पष्ट बाणी पढ़न दी दात बख्शनी गुरबाणी कीर्तन कथा दा भाव आईयां संगतां दे हिरदयां च वसा के कृतार्थ करनाई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा कीती दर कर विखे कीतियां सेवावां दर प्रवान करनियां परिवारां सुख शांति चढ़दी कला दाता बख्शनियां प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी जेलां च बंद प्यारे गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला वाली संगत कोल अरदास बेनती है आप जी दे बख्शिया खजानिया विचों कड़ाह प्रसाद दी देख सज के हाजर दर प्रवान होवे प्रवान है प्रसाद संगत वरताउण दी आग्या बख्शण बेनतियां गुरमत सार प्रवान करदिआं बख्शो लाई श्री मुख वाग उपरंता अपने सुखासन की सेवा बख्श करके लै लैनी सही प्यारे मेल जना मिलिया तेरा नाम चेता वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

जलाए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कह साधु कुर्बान। श्लोक सुगी वसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राजमान, सो नरक पाती होवत सुहान। जो जाने मैं जोवन वंद सोवत विष्टा का जंत, आप उसको कर्म मंद कावे। जन्म मरे बोजोन परमावे, तन भूम का जो करे गुमान। सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा, जिसके हृदय गरीबी उसावे। नानकिया मुक्ता के सुख पावे, तनवंता हुए कर करवावे। तृण समान के संग न जावे, बहु लश्कर मान को पर करे आस। पल भीतर ताका होए बना, सबते आप जाने बलवंत। किनमे होए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी। धर्म राय तिस करे खुआरे, गुरप्रसाद जाका मिटे मान। सो जन नानक दर गए परवान, कोट कर्म करे अवतारे। शर्म पावे सगले फिर तारे, अनक तपस्या करे अहंकार। नरक सुरग फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे। हर दर गए को कैसे गवे, आप उसको जो भला कहावे। तिसे भलाई निकट ना आवे, सर्व की रेन जाका मन होए। कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए। ताब इसको सुख नाही कोए, जब वे जाने मैं किस करता। तबला गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मी। तबला ने चलना ही चीज, जब लग मोह मगन संग माए। तब लग धर्म राय देश आए, प्रभु कृपा दे बंधन टूटे। गुर प्रसाद नानक हो छुटे, सहस खटे लख कोट तावे। तृप्त ना आवे माया पछे पावे, अन भोग विख्या के करे ना तृप्तावे। खपका मरे बिना संतोख, नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरते सब काजे। नाम रंग सब सको एवड़ भागी, किसे प्राप्त होए। करण करावने आपे आप, सहसदा नान घर जाव। करण करावन करने हार, इसके हाथ काम विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो कुछ किन्नो सो अपने रंग, सबते दूर सबों के संग। बुझे देखे करे विवेक, आपे कापे अनेक। मरे नाम से आवे ना जाए, नान सदी रे असमाए। आप उपदेशे समझे आप, आपे रचया सबके साथ। आप किनो आपन विस्तार, सब किस उसका वो करने हार। रस्ते पहन कहो कुछ होए, थान थनंतर एक कैसो है। अपने चलते आप करने हार, कौतक करे रंग पार। मन में आप मने अपने माहे, नानक कीमत कहन जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरप्रसाद, किने बख्या नहीं सच सच सच। सब कीना कोट मदे, किने बिरले चीना। पला पला पला तर रूप, यत सुंदर या पार रूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कर कर सुनी सर्व ख्याणी। पुत्र पुत्र पुत्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत सन जो जन परे, सो जन उदरन हार। संत के निंदा नानका, बोर बोर अवतार। अष्टपदी संत के दुख न आर जा कटे, संत के दुख न जमते नहीं छुटे। संत के दुख न सुख सब जाए, संत के दुख न नरक में पाए। संत के दुख न मत होए मलीन, संत के दुख न शोभा तेहीन। संत के हृदय को रखे न कोए, संत के दुख न थान पृष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नान संत संग निंदक भी तरे। संत के दुख न ते मुख पवे, संतन के दुख न कागज लवे। संतन के दुख न सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिक्त जौन क्रमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको शले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दुखी का था को नाए, नान संत पावे ता हो भी गत पाए। संत का निंदक मात आए, संत का निंदक खंडिक न पाए। संत का निंदक मात यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा वियोग। संत की निंदा दुख में दोख, नान संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग गए।

सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाय रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सियाणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मे होवन जी हुक्म लै वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक न हुक्मे बख्शी सो एक हुक्मे सदा पवाई है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म है जे बुझै ता हूं मैं कह न कोई

रहा है। जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विकसावे परवाहो।

जाए। तीर्थ नावां जित सुभावां विणपण के नाए करी, जेती सिरठियो पाई वेखा विणकर्मा के मिला लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जेक गुर की सिख सुने गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसुणी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चल सब कोए। चंगा ना उर खाई कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवै ता बात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई ना सुझे।

सब सुनें दुख पाप का नाश सुनें सत संतो ज्ञान सुनें अक्षर का स्नान सुनें

चरम सति संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, मन पावे मुख द्वार, मन परवार साधार।

पंच पर्वाण पंच प्रधान पंच पाव हैं दरगह मान पंच सोह दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान

असंख जापो असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंग रनमुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दाचार असंग सूरम पाख सार असंग मोल लिवलाय तार कुदरत।

असंख मूरख अंद कोर असंग चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंग अलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़िया कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पख खाहे असंख

कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार।

थत कवण वार कवण से रुते माह कवण जत हुआ आकार वेल न पाया पंडती दे हो वे लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखन ले कुरान थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जाकरता सिर ठीको साजे आप जाने सोई किव करे आखा किव सा लाही क्यों वरनी किव जाना नानके आखण सब को आखा एक दो एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डे नाई किता जाका होवै नानक जेको आपो जाने अगे गया न सो है पाताल पाताल लख आगास आगास

अमल धर्म अमल दे बाण अमल तल अमल परवान अमल बख्शीश अमल निशान अमल करम अमल फरमान अमल लो मल आख्या ना जाए आख आख रह लाए।

जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाना साचा सोए देखो आख्या बोल बिगाड़ो तां लिखिए सिर गावारां गावार सो दर के हा सो कर के हा जित वह सर्व संभाले।

गावन जते सते संतोखे गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सर जो जग वेदानाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले।

जाए। मुंदा संतोष रंबा चोले ध्यान के करह प्रभु तव, किंथा काल कुआरे काया जुगत डंडा परती तव।

एक संसार एक भंडार एक लाए दीबाण जिव पावे तिवे चलावे जिव होवे प्रमाण।

मनसोय सचखंड वस निरंकार कर कर वेख्या नदन हाल तिथ खंड मंडल वर पांड देखो कथ तायंत नायंत तिथ लो आकार जिव जिव हुक्म तवै तवकार वेख्या विगसह कर विचार नानक कथना कर डासार जत बहारा धीर सुनियार अरण मत वेद हथियार पौ खलागन तवताओ भांडा पाओ अमृत ताल कड़िया शबद सचि टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दाया खेल सगल जगत चंग्याईया बुरियाईया वाचा धर्मा दूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर।

मुख उज्जले केते छुटे नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

काम समस्त उपराजी समस्त सत धाम तेरा जो चाची छंद जले हैं थले हैं पीते जले हैं थले हैं पीते पै हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं भेस हैं भुजंग ब्रजा छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ते निधाने नमस्तम नाते नमस्तम प्रमाते समस्तम अगंजे नमस्तम पंजे नमस्तम काले नमस्तम पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राज नमो सात साज नमो शाह शाह नमो मा माह नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्वभोगे नमो

गाड़े ग्रहण के तो नहार सुबात नहीं चक चार लवैया साहेब श्री सब को सरनाए जाचन 101 दवैया दान दे बनंदन सचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव दे जल में तल में पली पल में सब धाव थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जाए तुन पापन के भव पुंज कपेंगे सात सू प्रसन्न फिरे सब सार सू प्रसन्न फिरे जाग सदर सवे अब लोक चपेंगे मानव इंद्र जननाथ जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट से नानक जातक दान अनेक सो अम्बर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पद अंध फसे जम पास भरेंगे जय नर श्रीपद के प्रसन्न भक्त नर फेर न दे तरेंगे कहाँ प्यो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियो ले सास समुद्रन लोग गयो पर लोग आयो बास कियो विखे आन सो बैठ के ऐसे है सुबह बतायो साज को सुन लियो सुबह जिन प्रेम कियो तनी प्रभ पायो काउ लान पूछते रहे सर काउ लंगरे लड़कायो काउ लखे और बच्ची सामे काउ बचाको शीश निभायो को बुतान को पूछते हैं पर सबको मृतान को पूजन तायो कूर किरिया और जियो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि आज बेनती चौपे हमरे करो आदे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मारे हमारा अपना जान करो दोबारा हमरे दुस्वे तुम गावो आप आदे मोह बचावो सुगी वसे मोरो परवारा से सिख सब करदारा मोरो शान कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भैन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो मर जाओ सो तुम ते पाओ सेव सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिय आबाद है मुझे वरिय मन काल का त्रास नरिय उजो सदा हमारे बच्चा श्री जो करे और अच्छा राख लियो मैं राखना रे सा संसाए प्यारे दीन बंद इनके अंता तुम हो पुरी तर दसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव जीव अवतारा काल पाए कर वचन प्रकाशा सगल काल का की तमासा जमन काल जोगी सब कियो वेदनाथ ब्रह्मा ज्योति यो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आद अंत कै अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिजी को हमारी सगल प्रजाजनी आप सुवारी शिवकुन को सब कुन सो दियो शत्रुन को पल मोहबत कियो कड़ कड़ के अंतर के जानत बले बिने की पीर पिछान चीटी ते कुंचर दूला सब पर कृपा दिशकर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कड़ कड़ के फट फट की जाने जाबुद कर कर आकर धारा प्रजा धर तब दे पारा जब कर कर दो कबू तुम्हें मिल दे तर सब ऊन जेते बदन से सब धारे आप अपनी मुझे चारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत भेद भेद रालम निरंकार निर्विकार निलंब आद नीर आद संभ ताका मूड चार भेदा जाको भेम न पावत भेदा ताको कृपान मंत मां मूड किस भेद जानत मां देव को कैत सा शिव निरंकार का चिंतन पे आप अपनी बुद्धा जेती बणत भिन्न भिन्न तो देती तुमरा लगा न जाए पसारा कैव सजा प्रतन संसारा एक कै रूप नूस रूपा रंग प्यो राव के भूपा अंड जेर से दिनी तुझ खान बोरा दिनी गौ भूल राजा बैठा कहूं सिम प्यो शंकर कैठा श्री सिर दिखाए चंबवा जुगा श्रू सुम्बर चा मेरी तुम करो से कहो आर सिख संगरो दुष्ट दे रुद पाता सकल मलेश करुण गाता जे अस्त सनी परे तिनके दुष्ट दुख तुम्हें मरे पुरख जीवन परे त्यारे तिनके तुम संगठ सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकने हैं रक्षा हुए था सब काला दुष्ट रिष्ट ने काला कृपा दिश तन जायन हरियो ताके ताव तन कुमो हरियो रिद सिद्ध कर्म सब हुई दुशास हो सके न कोई
एक बार जिन तुम्हें सुमारा काल पास दे दायो बारा जिन्ना नाम ते आरो का दार दुष दो तेरा करके तुम्हें सन ते हरी आ पा दे ले वारी सारो ठौर मोह साहे दुष दोग ते ले चाहे कृपा करिय पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता किल बिक सकल देखो अर्था दुष दोखियन कोशा करता श्री तुझा पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नांत से व्याप्त कोई इडल सुने गुंग जो जाय सरस ना पावे सुने मूर्छित लाए चतरता आवे दुख दर्द पाव निकट ना तिन नर के रह हो जाकी एक बार चौपी होके चौपी समन सत्रह सहज पण जय अर सहज पण तीन की जय पादर सुधी अष्टमी रविवारा तीर्थ तद्रगन सुधारा सवैय पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंक त्रे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्य हो सिमर शास्त्र बेसवे वो पीत कहे हा मैं एक ना जाने हो श्री पान कृपा तुमरी कर मैं ना के हो सब तो बिखाने दो राम सगल द्वार को छाड़ कह गए हो तुम्हारो द्वार पाएंगे की लाज गोविंद दास द्वार सगल द्वार

0: जिनकी लिखे पत पवे
1: चंगे से इके पौड़ी
2: तुर कर्म जिना को तुद पाया ततनी खसम त्याया इना जनता के वास किस ना ही तुदवे की जग तु पाया एक नानो तू मेल ले कप तुद खुआया गुर कृपा ते जाने आज थे तुदा बुझाया सहजे ही सत समाया।

सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपहो हार रंगे पार तन दुख किछ पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उधरे प्रभ शरणाई कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई

प्रभ शरणाई। आप प्रभु ने पूरे गुरु नाल मिला के शब्द की दात दे के उदे अंदरों त्रिशना की अग बुझा दिती हुंदी है। हे भाई, इस प्रकार वह परमात्मा की शरण विच आ के उधर जाते ने, उन्हां दा पार उतारा हो जाता है। गुरु स्वरूप साध संगत जी, इनियां बेनतियां प्रवान करनियां, बेअंत भुलां गलतियां जो मेथों विचारां करदियां होईयां ने, उन्हां दी खिमा बख्शिश करनी जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईया, शब्दो ता गाव हो, हरि केरा मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो।

पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आव काल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दितार जीओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो।

अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले होए एकत्र मिलह मेरे भाई।

पंथ जी माहौल बनिया ध्यान दिया जे सफा विश गई फील करो सफा विश गई असि सारे बैठ गए हुण डिबेट किवें शुरू होवे मतभेद किवें दूर होण पंथ किवें एक प्लेटफार्म ते कठा होवे ते जिवें लाहौर तो अहदीए आए सन भी खालसा जी सानू माफ कर दिओ नवाबी लै लो नवाबी लै लो आप चल के आई पर कदों जदों तुसी सारे अकाल तख्त साहब ते कठे हो गए सो गज के आखो सतनाम श्री ओ सफा वश गई है हुण आओ विचार करिए भाई साहब भाई गुरदास जी पुछिए भाई साहब तुसी कोई पंथक एकता बारे सूत्र दसो ता भाई गुरदास जी कहन लगे जैसे एक चींटी पाछे कोट चींटी चली जात एक टक पग डग मग सावधान है जैसे कूंज पांत बांध भली भांत सहज मैं उड़त आकाश चारी आगे अगवान है जैसे मृग माल चाल चलत टलत नाही जत्र तत्र अगर भागी हमें तत ध्यान है।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लाइन ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासें हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवे ताई। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपया वंड के शीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। इन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए सिखी सिदक केसां सवासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेता वै चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथिया रियाए देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बारे बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहू दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चमकियां झंडे बंगे जगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुर

प्रकट अंदर व्याप रही, हर जरे जरे अंदर व्यापक मान प्रभु सर्व जगह दे ऊपर रमिया होया नजर आउंदा। हजूर गरीब नवाज धन धन साहब गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने रमे हुए परमात्मा नूं इउं फरमान कीता कि ओ जल अंदर थल अंदर मही आकाश अल धरती दे सारे हिर जगह दे उपर परमात्मा व्यापक मान जल थल मही अल पूरे आ स्वामी सिरजन हार अनक भांत होए पसरे आ नानक एक अंकर। एक परमात्मा सारी जगह दे अंदर रमिया होया नजर आ रहा है। ये ऐसे रमे हुए परमात्मा नूं भगत नामदेव ने अपनी पावन गुरबाणी दे अंदर बड़ा सुंदर फरमान कीता है, जिस नूं साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने प्रवान के बड़ा सुंदर फरमान कीता। मेरा गोबिंद सब जगह दे उपर व्यापक मान है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बन नहीं कोई। गोबिंद अकाल पुरख परमात्मा तो बगैर कोई संसार का जरा कोई संसार का कोना खाली नहीं। हर एक जगह दे उपर रमिया होया, बल्कि ऊंच नीच दे अंदर ओदी जोत है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं, घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार। ऐसे नू हजूर गरीब नवाज अपनी पावन गुरबाणी दे अंदर ए दसम पातशाह श्री दसम ग्रंथ दे अंदर बड़ा सुंदर फुरमान करदे आ। ते भाई नंद लाल जी अपनी गजलनामे दे अंदर बड़ा सुंदर फुरमान करदे आ कह रहे हैं,

बंदना बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। गोपाल राय क्या वाहिगुरु जी ने पंजवें पातशाह बंदना करन दा पन तरीका दस रहे। बंदना दे नमस्कार जिवें गुरमुख आउंदे ने सतगुरां नूं नमस्कार कर रहे ने सारे, कई डंडौत करदे ने लम्मे पै गए, वह भी लिखिया गुरबाणी च डंडौत बंधन अनेक बार सर करदे आ। डोलन ते राखो प्रभु, हे मेरे वाहिगुरु मेरे मन नूं थिर कर दिओ,